0: गावे मन ब्यास, जिन वेद व्याकरण विचार है, ब्रह्मा गुण उच्चर है, जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारे, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझान्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन वाण्यो, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझान्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो।
1: गुण गावे नवनाथ तन गुर साज सुमायो, मां ताता गुण रवे जेन चकर वे कहायो, गुण गावे बलरा सपत पताल बसंतो, पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो, दूर बाबरू रंगरे गुरु नानक जस गायो, कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो, कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो।
2: आद पुरख करतार करण कारण सब आपे, सर्व रहयो परपूर सगल काट।

0: जाको मन ध्यान तारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेवा मन गहे ना तो जात का बलास को जाको जोगी जाति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फेर तो उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गोर रामदास को।
1: देह ना गेह ना नेह ना नीता माया मत कहां लोगारो शतर ना पतर ना चौर ना चावर बहती जात हृदय ना बिचारो रथ ना असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नांग सिधारो सूर ना बीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारो कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारो मित्र ना पुत्र क्लतर साजन साख उल्टत जात बिरक्की शारो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरण छिन छिन सिमरो अगम पारो श्रीपत।

0: तीरत कहै त्राहे त्राहे तो पासरने।
1: जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो।

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख हुवे सिफत खसामदी नूर अरसहं कुरसहं।

0: अपराधी दुना निवे जो हंता मिर्गा है शीश निवाया क्या थी है जान देख सुदे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पुज स्वगल समादन मुख झूठ विभुख जान ते पाल ते हाल विचारन गल माल तिलक ललाटन दो तोती बस्त्र कपाटन जे जान सुबर मंग कर्मं सब फोक्त निश्चो कर्मं।

0: पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तरण ना जाई धोती टिका तै जप माली धान मले छा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका भाए छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज श्री भगवान गलता